0: Your news from here
1: and hits from home.
0: SBS South Asian.
2: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे। आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

मित्रों कार्यक्रम में हवे समय थयो छे गीत सांभळवानो, तो आओ सांभळीए आदित्य गढ़वीना स्वर में गोतीलो।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS उर्दू फर्स्ट नेशन बाशिंदों को इस सरजमीन के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करना चाहता है जहां से हम आज का प्रोग्राम नशर कर रहे हैं. SBS उर्दू इस जमीन के माजी और हाल के वारिसों और उनके आबाओ अजदाद को तस्लीम करने के साथ एबोरिजिनल और टॉरेस आइलैंडर्स को भी यहां के रवायती मालकान के तौर पर तस्लीम करता है. अस्सलाम वालेकुम. आज 17 जून है सन 2026, बुध की सहपहर, और आपका मेज़बान रेहान अलवी उर्दू नशरियात के साथ हाजिर है. और हमें यकीन है कि आप सब बखैरियत होंगे और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे. अगर आप हमारे प्रोग्राम को इस वक्त शाम के वक्त सुन रहे हैं तो ये नशर मुकर्रर का वक्त है, क्योंकि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न वक्त के मुताबिक सहपहर 3 बजे पॉप देसी पर नशर होती हैं. बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है. अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं. ताज़ा मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए. और मुझे यकीन है कि आप हमारे प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होंगे, और अगर रेडियो पर बराह रास्त नहीं भी सुन पा रहे हो तो आप हमें हमारे वेब पेज पर जाके सुन सकते हैं. और हम फेसबुक पर भी रोज़ाना पोस्टिंग करते हैं, और वीडियो पर भी हम वीडियोस भी छोटी छोटी रील्स आपके लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं. आज आपके प्रोग्राम के लिए हमने जो कुछ इंतखाब किया है उसमें गीत, नगमे और गज़लें तो शामिल ही हैं, मगर आज आप ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में सुनेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में चैरिटी की फंडिंग या चंदा देने या जमा करने या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग किस तरह की जाती है, इसके क्या कानूनी तरीक़ेकार है. इस सिलसिले में आप एक मालूमाती पॉडकास्ट आगे चल कर सुनेंगे, और इसके अलावा आपको हम सुनवाएँ चकवाल की कहानी. जी हाँ, आपने खबरों में ये अफसोसनाक खबर पहले भी शायद सुनी हो कि पाकिस्तानी नजाद एक 9 साला बच्ची जो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी पंजाब चकवाल में मौजूद थी, वहाँ चोरों की फायरिंग के क्रॉस पुलिस की फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर जान बहक हो गई है. इसकी बहुत सी खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, तो आप इस सिलसिले में हमने बच्ची के वालिद जो ख़ुद भी ज़ख्मी हैं और अस्पताल में हैं उनसे बातचीत की है, और सही सूरत हाल जानने के लिए उनसे बातचीत आपको सुनवाएंगे. इसके अलावा आपको पाकिस्तान भी लिए चलेंगे, जहां पाकिस्तान की सालिसी से अमेरिका ईरान अमन माहिदा मुतवक्के है, और बजट पर पीपल पार्टी के तहफ़ुज़ात हैं. पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं, और इमरान ख़ान की जेल से अस्पताल मुंतकली, ये सब मौजूआत का अहाता करेंगे पाकिस्तान रिपोर्ट में. और इसके अलावा भी बहुत से ऐलानात और अहम खबरें प्रोग्राम के हिस्सा रहेंगी. और वर्ल्ड कप का एक अहम मैच उर्दन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इस वक्त जारी है. अगर उस वक्त तक कोई नतीजा आ गया, जब तक हम ये प्रोग्राम आपसे ख़त्म कर रहे होंगे, तो उसका जिक्र भी करेंगे. इसके अलावा भी फीफा वर्ल्ड कप की बहुत सी कहानियां हमारे वेब पेज पर, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं. लियारी की एक वीडियो स्टोरी भी बहुत ट्रेंड कर रही है, जो आप देख सकते हैं SBS उर्दू के इंस्टाग्राम पेजेस पर. मगर आइए पहले चलते हैं ताज़ा तरीन खबरों की तरफ. खबरों का मुख्तसर बुलेटिन आपको सुनवाते हैं. सत्रह जून बरोज बुध की उर्दू खबरों के साथ मैं हूं रेहान अलवी. स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान और अमेरिका स्विस रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में बाजाब्ता तौर पर माहिदे पर दस्तखत करेंगे. स्विस मीडिया के मुताबिक मुजाकराती सालिस पाकिस्तान और कतर ने इस नए मुकाम की तजवीज़ दी थी. अन माहिदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी, और तकरीब के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के हमरा जेनेवा रवाना हो रहे हैं. इम्कान है कि ईरान और अमेरिका के वफूद जुमे के रोज़ बाकायदा मुलाकात करेंगे. खातमुल अंबिया ने एक बयान में खबरदार किया है कि अगर इसराइल जनूबी लिबनान पर अपने हमले बंद नहीं करता तो उसे ईरानी मुसल्ला फौज की जानिब से सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर की जानिब से जंग के खात्मे के ऐलान के बावजूद इसराइल ने जनूबी लिबनान में 84 मरतबा जंगबर्दी की खिलाफवर्जी की है। ऑस्ट्रेलिया में 2024 के दौरान मनुष्यात की ज्यादा मकदार के इस्तेमाल से होने वाली अमवात की तादाद मुल्की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। आज़ाद इदारे पैंटेगन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक मनुष्यात के बायस 2596 अफराद हलाक हुए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 11% ज़्यादा है। विक्टोरिया में ऐसे बालिग अफराद को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है जो बच्चों को संगीन जराइम के इर्तिकाब के लिए भर्ती करते हैं। इस हवाले से नए कवानीन रियासती पार्लियामेंट में पेश कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुहिदे के बाद मशरक वस्ता के बाद हिस्सों के लिए सफरी इंतबाह में नरमी कर दी है। महकमे खारजा ने बहरीन, इसराइल, कुवैत, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए सफर न करने की हिदायत को सफर की जरूरत पर दोबारा गौर करने की सतह पर मुंतकिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इसराइल के सफीर ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोफ्लोटेला में सवार ऑस्ट्रेलियन शहरियों की जानिब से लगाए गए बदसलूकी के इल्जाम को मुस्तरद किया है और उन्हें मुतजाद करार दिया है। इसराइल ने फ्लोटेला पर सवार 11 ऑस्ट्रेलियन शहरियों को हिरासत में लिया था जो गजा तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इन अफराद ने आलमी फौजदारी अदालत में जमा कराई गई सरकारी दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया है कि दौरान हिरासत उन्हें तशद्दुद और जंसी तशद्दुद और दीगर नारवा सलूक का निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि उन्होंने सदर ट्रंप की सालगिरह की तकरीबात के दौरान व्हाइट हाउस में मुनक्किद होने वाले UFC इवेंट पर हमले की एक मुबैना साजिश को नाकाम बना दिया है। FBI के डायरेक्टर के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि हुक्काम इस मंसूबे को एक मरबूत दहशतगर्दाना साजिश करार दे रहे हैं। ताहम मुबैना मंसूबे की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गईं। वन नेशन के सरबरा पॉलिन हैंसन आज पहली बार पार्टी रहनुमा के तौर पर कैनबरा के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का सामना कर रही हैं। वन नेशन की हालिया मकबूलियत के बाद उन पर एक संजीदा सियासी पार्टी के लीडर के तौर पर पॉलिसी बयान देने पर दबाव बढ़ता रहा है। प्रेस क्लब में पॉलिन हैंसन के प्रेस क्लब में खिताब के दौरान मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी की और उनके खिताब के दौरान रखना डालने की कोशिश की। और अब फुटबॉल के वर्ल्ड कप की खबरें। फुटबॉल में इराक के कोच ग्राहम अर्लैंड ने कहा है कि अपनी टीम की वर्ल्ड कप मुहिम के इफ्तिताही मैच में नार्वे के हाथों 4-0 से भारी शिकस्त के बावजूद उनकी तमाम उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। याद रहे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एकेडमी के साबिक फुटबॉलर जैदान इकबाल पहले पाकिस्तानी नजात फुटबॉलर बन गए हैं जो वर्ल्ड कप के किसी भी मैच में इराक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैदान इकबाल मैनचेस्टर में पैदा हुए और वहीं पले बड़े हैं। वो अपने वालिद की तरफ से पाकिस्तानी और वालदा की तरफ से इराकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप के एक और अहम और दिलचस्प मैच में अर्जेंटीना ने अपने सुपरस्टार खिलाड़ी मेसी की हैट्रिक के बदौलत अल्जीरिया की टीम को 3-0 से हरा दिया। यहीं पर इस वक्त की खबरें खत्म करते हैं। मैं हूं रिहान अलवी और आप हैं SBS उर्दू के साथ। ताज़ा तरीन तफसीलात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए।

अभी आप ताज़ा तरीन ख़बरें सुन रहे थे। ये मुख्तसर ख़बरों का बुलेटिन हम रोज़ाना आपके लिए वर्किंग डेज़ में लेकर आते हैं। सुपहर 3 बजे हमारे फेसबुक पेज पर भी ये पब्लिश होता है। और जो ख़बरें आपने सुनी उनमें एक डेवलपिंग स्टोरी थी वन नेशन की सरबरा पॉलिन हैंसन की प्रेस क्लब में तकरीर के बारे में, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें एक ये इजाफी नोट आपके लिए और मालूम के तौर पर शामिल कर रहे हैं कि वन नेशन की सरबरा पॉलिन हैंसन ने आज प्रेस क्लब में खिताब के दौरान जहाँ कई मौजूद पर इजहार ख्याल किया, वहाँ उन्होंने बरसर इकदार आने की सूरत में SBS को ख़त्म करने की पॉलिसी का भी ऐलान किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप की भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि अभी आपने अर्जेंटीना के मैच के बारे में सुना और मैसी ने 3 गोल यानी हैट्रिक की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इस वक्त उर्दन और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच जारी है, और अगर मैच के खात्मे तक और हमें सूरत हाल मौसूल हो गई तो हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आप सुन सकेंगे कि चंदा देने या चैरिटी के कामों के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल जवाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी शहर चकवाल में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की तरफ भी ले चलेंगे और उस हादसे में जहाँ वाहक होने वाली 9 साल बच्ची के वालिद से आपको उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे। पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका ईरान माहदे का जिक्र रहेगा। ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तान के क्या हालात हैं उसकी बात होगी, और इमरान खान को जेल से अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया, ये तमाम बातें पाकिस्तान रिपोर्ट में सुन सकिएगा। इसके अलावा भी कई मौजूद का अहाता करते रहेंगे, गीत गज़लें और नगमे भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद। लेकिन वक्फा लेने से पहले क्यों ना आपको एक गीत की तरफ लिए चले। जी हाँ, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं जो जिमी खान और रहमा अली की आवाज़ में है और इसका टाइटल है नदिया। और ये गीत 2017 में कोक स्टूडियो में बड़ा सुपरहिट हुआ था। लीजिए आप भी सुनिए।

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
3: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
2: Learn more at emory.edu.
4: पर गुफ्तगु करें, हमें पसंद करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। SBS उर्दू फेसबुक पर।
5: आप हैं SBS उर्दू के साथ और मैं हूं रेहान नदवी। और आगे चलकर हम आपको पाकिस्तान रिपोर्ट में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का अहाता सुनवाएंगे। पाकिस्तान की सालिसी के साथ अमेरिका और ईरान का अमन माहिदा जुमे को उस पर दस्तखत होने मुतवक्के हैं। बजट की बात है, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का जिक्र है और इमरान खान की बातें। ये तमाम मौजूदात शामिल रहेंगे पाकिस्तान रिपोर्ट में, जब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको सुनवाएंगे। मगर इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं एक और स्टोरी की तरफ, जो थोड़ी सी दर्दनाक भी है, परेशान कुन भी है और बहुत से सुनने वालों के लिए परेशानी का बायस भी हो सकती है। और आपने खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान में सफ़र के दौरान पर्थ का एक ख़ानदान मुबैना तौर पर डकैती का शिकार हुआ, जिसके बाद मुश्तबा डाकुओं के ख़िलाफ़ वो पुलिस कार्रवाई की जद में आया। वाकये में वालिद अदील अहमद और उनका बेटा तो ज़ख्मी हो गए, जबकि उनकी 9 साल ऑस्ट्रेलियन बेटी हानिया पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर अहले खाना को मुश्तबा अफराद समझने के बायस फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गई। पाकिस्तानी हुकाम ने आला सतही तहकीकात का हुक्म देखते हुए शफाफियत की यकीन दहानी करवाई है। ताहम SBS उर्दू से गुफ्तगु में अदील अहमद ने कहा कि पुलिस और हुकाम की जानिब से मुतज़ाद बयानात और गलत मालूमात की फराहमी ने पुलिस की तहकीकात को मशकूक बना दिया है। पुलिस कहती है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, दफ़ा 302 के तहत चालान किया गया है। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड में जेल मुंतकिल करने के अहकाम दिए हैं। मुलजिम से सरकारी असलाह भी रिकवर कर लिया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए कल 16 जून को चकवाल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। यानी आज की खबरों के मुताबिक ये केस तलब कर लिया गया है। आइए इस सिलसिले में हमारे प्रोड्यूसर ने बातचीत की है मोहम्मद रियाज ने अदील अहमद से, जो कि बच्ची के वालिद हैं और इस वक्त ख़ुद भी ज़ख्मी हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। उनसे की गई बातचीत पर मबनी ये पॉडकास्ट सुनिए और ये इंतबाह कि इसमें कुछ मालूमात सुनने वालों के लिए तकलीफ देह हो सकती है।
6: पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर चकवाल फायरिंग वाक़े में बेटी की हलाकत पर पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद का मौक़िफ़ सामने आ गया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियन अदील अहमद के खानदान के साथ जिला चकवाल में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े के हवाले से SBS उर्दू ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। इसी बारे समाअत कीजिए कि अदील अहमद अपनी जुबानी इस अफसोसनाक वाक़े को किस तरह बयान करते हैं।
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील अहमद है, मैं पर्थ का रहने वाला हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी थी हानिया अहमद जो 9 साल 2 महीने की थी, एक मेरा बेटा है जो ऑलमोस्ट 11 साल का है। हम पाकिस्तान आए हुए थे, हमने हज किया, हज की वापसी थी हमारी 10th of June इन द मॉर्निंग। हम घर आए, हम सो गए, उसके बाद हम शाम में अपने अंकल की तरफ, जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, वहाँ पे हम खाना खाने गए, विच इज़ अगेन 10th of June। हम वहाँ से तकरीबन 12:45 वहाँ से निकले तो हमने, हमारे एक और अंकल हैं जो मेरी वाइफ के मामू हैं, उनके घर पर हमने थोड़ी सी चीज़ें ड्रॉप करनी थी। हम उनके घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी तो इतनी देर में 2 चोर हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हमें सारी चीज़ें दे दें। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, हम उनको सारी चीज़ें जो हमारे सामने थी वो हमने दी। अभी हम दे ही रहे थे उनकी चीज़ें, उन्होंने कुछ चीज़ें हमसे ली। मेरे बेटे अफान अहमद को 2 गोलियाँ लगी हैं, अभी वो डेंजर से बाहर है लेकिन प्रोलॉन्ग पीरियड है। अफान को अबाउट 40 mL का होल है बटक के ऊपर और मेरे बाजू में भी अबाउट 30 से 40 mL का होल है। AK-47 से हमें मशीन गन से गोलियाँ मारी गई हैं। जो मेरी बेटी हैं उनके जारी जो मैंने देखा वो 3 से 4 निशान थे जख्म के और वो मौके पे ही शहीद हो गई थी। अस्पताल पहुंचने से पहले वो शहीद हो चुकी थी। ऑल द पुलिस कह रही है कि वो हॉस्पिटल जाके शहीद हुई थी, नहीं ये रॉन्ग है, वो ऑन द स्पॉट ही शहीद हो चुकी थी। हम जब घर आए उसके बाद जब मैंने गाड़ी वहाँ से चलाई भी तो CCTV वालों ने हमें फॉलो किया और

0: लेकिन अल्लाह का नाक शुक्र था कि मैंने सामा वो दो गोली लगे गाड़ी चला ली, लेकिन उन्होंने हमें हमारी गाड़ी पे इतनी फायरिंग की कि हमारी जो गाड़ी की ब्रेकें थी सारी फेल हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हम पे फायरिंग की है। उसके बाद हम घर आए, मैं अंकल के घर पे किया जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्होंने वहाँ से हमें हम वहाँ पे रेंडम मत दे तो उन्होंने हानिया को बजियो मेरी वाइफ को उन्होंने अस्पताल में छोड़ा, और बाकी बाद में मेरा बेटा जो था वो बाद में आया था हॉस्पिटल में। ये सारी स्टोरी है की है। तो गवर्नमेंट ने हमारी सोफर कोई हेल्प नहीं की है। हमारे जो DPO हैं उन्होंने एक दो बार विज़िट किया हमें, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी बिल्कुल ही ओपिनियन है कि वो हमारे जो CCD वाले हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। कभी वो पहले उन्होंने बोला कि कुछ है ही नहीं, अभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक बंदे को चार्ज करेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम Section 302 लगाएंगे, कभी कहते हैं 322 लगाएंगे, और उसमें भी ये क्या है कि वो उसको मिनिमम सज़ा पे रखना चाहते हैं। उन्होंने उसको सिर्फ डिसमिस किया बंदे को, वो भी एक बंदे को जो शुड हैव बीन 2+। तो अभी तक ये स्टोरी है, लेकिन हम इनके ना यहाँ के इलाज से खुश हैं और ना किसी और चीज़ से खुश हैं। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, कहते कुछ हैं आके मिलते हैं अच्छे से मिलते हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कुछ और करते हैं। रही बात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो मैंने रब्ता किया था कंसुलेट को, वो आए थे हमें मिलने आए थे, किम भी आई थी, वली भाई भी आए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि वो कल दोबारा आएंगे मिलने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिकमेंड करके गए हैं कि ये हमारी लॉयर्स की लिस्ट है, इसके अलावा हमें कोई अभी तक हेल्प नहीं मिली है। हमें फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें कोई GoFund पेज नहीं शुरू करना, ना हमने कुछ और किसी बंदे से हमें खैरात की ज़रूरत है। ऑल वी वांट टू डू इज़ वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे साथ जो हुआ वो ये इसको पुट टू बेड किया जाए, जिस बंदे ने हमें मारा है उस CCD वाले ने, पुलिस वाले ने, पुलिस वालों ने, उनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये वाकया रिपीट ना हो और CCD वालों के इख्तियारात को कम किया जाए। दिस मैटर शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। मैं उनको ईमेल भी करूँगा एंथनी एल्बनीज़ को, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हायर चैनल्स पे जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं उनको फ़ोन कॉल करें, उनसे मिलें, उनसे ईमेल करें, व्हाटएवर ही नीड्स टू डू इट नीड्स टू बी डन प्रॉपरली ताकि इस चीज़ को सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये इंतहाई इनकम्पिटेंट लोग हैं CCD वाले, इनके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इनको कोई दिमाग नहीं है, इनको बस राइफलें दी हुई हैं, मशीन गनें दी हुई हैं, ये बस जो है ना बस गोलियाँ चलाने के बाहर है, और इनके पास कोई दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा था वो मैं देख लिया था उन्होंने CCD वालों ने, CCD दफ्तर के बिल्कुल पास ये बात हुई है, उनके भी कैमराज होंगे, उन्होंने मतलब कोई फुटेज अभी तक उन्होंने हमें प्रोवाइड नहीं की है। ऑब्वियसली जो फुटेज मिली है अभी सो फार वो हमें एक गली जो थी लोकल होम था वहाँ से मिली है। CCD के अपने ऑफिस के बाद डेफिनेटली फुटेज होगी, वो फुटेज पब्लिक को दस्तयाब होनी चाहिए कि उस वक्त वहाँ पर क्या हो रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता मैं वेट करता, चोर हमें लूट के जो चीज़ लेनी थी वो चले जाते, उसके बाद उन पर फायरिंग करते। जो जनरल पब्लिक उस पर कैसे फायरिंग की गई है एट दैट पॉइंट, भी उनको ये नहीं पता था कि जनरल पब्लिक भी वहाँ पे है चोरों के साथ जो लूट रहे हैं उनको, और उनके ऊपर फायरिंग कर देगी। इनका इंतहाई अनप्रोफेशनल लोग हैं, इंतहाई अनप्रोफेशनल। जस्ट सो दैट इट इज़ क्लियर, जो फायरिंग शुरू की गई थी वो CCD ने शुरू की थी, चोरों ने फायरिंग पहले शुरू नहीं की थी। ये 2 से 3 बंदे थे जिन्होंने हमें गोलियां चलाई हैं, और पहली फायरिंग CCD ने की थी और उसके बाद CCD ने हमें गोलियां मारी हैं। ये गोलियां जो चोरों ने हमें बिल्कुल भी नहीं मारी। इसके अलावा एक बात और भी है कि CCD वाले जो एहलकार थे उन्होंने हमें चेज भी किया है, उन्होंने हम पे गोलियाँ मारी हैं, पीछे से भी हमारे गाड़ी पे करते रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो थी हम जब मैं गाड़ी चला रहा था तो हम टर्न लेते रहे हैं, तो उस वजह से हमने उनको डॉच कर दिया और उन्होंने हमें छोड़ दिया, अदरवाइज़ वो हम सबको कत्ल कर देते। उनकी ये इंटेंशन थी, जैसे उन्होंने गोलियां शुरू से मारी थी वो एंड पे भी ये करते रहे हैं, उन्होंने यही करना था। और एक बंदा हरगिज़ भी नहीं है, ये 4 बंदे हैं, 2 मोटरसाइकिल थे, और इसका मतलब 4 बंदे, और 4 बंदों को एटलीस्ट चार्ज होना चाहिए।
1: सामीन, अदील अहमद की गुफ्तगू आपने समाप्त की। अदील अहमद अब शफाफ तहकीकात और इंसाफ के मुंतजिर हैं।
2: यहाँ यह एक याद दहानी कि ये इंटरव्यू इतवार 14 जून को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वाकया ये 10 जून को हुआ है चकवाल में, और इसके बाद काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि हमारे कायम करदा जवाबित से इनहराफ का कोई जवाब नहीं था, और केस की हसासियत के पेश नज़र तफ्तीश अब मुकामी पुलिस से लेकर CCD के हवाले कर दी गई है। हुक्काम के मुताबिक मुकदमे का इंदराज दफ़ा 303 के तहत किया गया, ताहम अब इसमें दफ़ा 322 भी शामिल कर दी गई है। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए हैं। मुलजिम से सरकारी असलाह रिकवर कर लिया गया है, जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने चकवाल फायरिंग केस को हाई प्रोफाइल केस करार देते हुए 16 जून को चकवाल केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। तो ये तो अब तक की डेवलपमेंट है और ये एक अफसोसनाक वाकया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस पर काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है और इस सिलसिले में हमारी अपडेट्स और हमारी बहुत सी पोस्ट और वीडियोस आप sbs.com.au/urdu पर पाएंगे। इसके अलावा facebook.com/sbsurdu और instagram.com/sbsurdu पर भी एक रील भी मौजूद है और इंटरव्यू भी मौजूद है और इसका बारे में बहुत सी तफसीलात हमारे फेसबुक पेज पर पहले ही आपके लिए काफ़ी मालूमात फराहम कर रही हैं। इस सिलसिले में अगर आप में से कुछ लोग इससे किसी किस्म की मदद हासिल करना चाहें तो रेस्पेक्ट ऑस्ट्रेलिया पर जाकर मदद हासिल कर सकते हैं। और SBS की बाकी नशरियात के बारे में भी आपको आगाही दे दें कि हम लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम के मुंतखब हिस्से sbs.com/sbsurdu पर पेश करते हैं। आप हमें फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं अपना मैसेज facebook.com/sbsurdu पर और यहीं पर मिलती हैं वीडियोस, अहम खबरों की डेली पोस्ट, तस्वीर के एल्बम्स, ब्रेकिंग न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया भर की कम्युनिटी खबरें। हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए बिल्कुल मुफ्त मौजूद है। इसकी तफसीलात sbs.com.au/audio पर देखी जा सकती हैं। आइए इस वक्त आपको नासिर काजमी की एक बड़ी मशहूर गज़ल सुनवाते हैं जिसे ग़ुलाम अली ने गाया। इसके अलावा भी इसे बहुत से गुलकारों ने गाया जिनमें तसव्वुर खानम भी शामिल हैं, मगर इस वक्त जो गज़ल आपको सुनवा रहे हैं वो ग़ुलाम अली की आवाज़ में है और इसके बोल हैं, दिल में एक लहर सी उठी है अभी।

0: अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में नासिर काज़मी की गज़ल सुन रहे थे। एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं। SBS उर्दू की नशरियात में जब हम वापस आएंगे तो आपको हम पाकिस्तान लिए चलेंगे और वहाँ करंट अफेयर यानी हालात हाजरा की सूरत हाल के बारे में आगाही देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न पर जारी एक बड़ी मकबूल टेलीविज़न सीरियल का एक OST भी आपको सुनवाएंगे, जो उस सीरियल के साथ साथ खुद भी मकबूलियत हासिल कर रहा है। ये सब कुछ एक वक्फे के बाद।
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare.
0: SBS उर्दू की नशरियात में रिहान अलवी आपके साथ मौजूद है। इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं हालात हाजरा की तरफ। पाकिस्तान से सुनते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें जिक्र है अमेरिका ईरान के अमन माहदे की, इमरान खान की जेल से अस्पताल मुंतकली की, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के बजट पर तहफ़ुज़ात और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कशीदा हालात का। ये सब सुनिए पाकिस्तान रिपोर्ट में।
6: SBS उर्दू के लिए इस हफ्ते की रिपोर्ट के साथ मैं हूं असगर हयात। सामीन, अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी से जंग बंदी और अमन माहदा तय पा गया है। अमन माहदे पर दस्तखत जुमे के रोज जेनेवा में होंगे। फ्रांस में जारी G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे की तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल करने में कामयाब नहीं होगा, आपने हुरमुज जुमे को मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखतों की तकरीब का मेज़बान होगा।
7: जो इज्जत अल्लाह ताला ने आज अदा फरमाई है जनाब स्पीकर, अपनी कमाल मेहरबानी से कभी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिली। अमन के क्याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज वक्फ कर दिए।
6: पाकिस्तान के वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान अमन माहदे को बड़ी सफारती कामयाबी करा दिया है।
8: 78 साल में इससे ज्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के खिलाफ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया।
6: उधर पाकिस्तान के सिक्योरिटी राय का कहना है कि अमरीका ईरान मामले पर पाकिस्तान एक ऐसे इशू को डील कर रहा है जो बहुत पेचीदा है। सामीन, बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात दूर ना हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने एहतजाजन कौमी असम्बली में अपनी तकरीर मुलतवी कर दी है। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी के साथ मशावरत के दौरान जो तजावीज़ और आदाद व शुमार शेयर किए गए थे उनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमाया फर्क है। पीपल्स पार्टी मामले पर हुकूमत से वजाहत तलब करेगी। उधर हुकूमत ने बजट की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राबता किया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के सामने अपने तहफ़ुज़ात रखे हैं। कौमी असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट के मामले पर इसहाक डार से मुलाकात हुई है, आगे भी मुलाकातें होंगी। उन्होंने कहा कि वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पुरउम्मीद हैं।
9: बजट पर तहफ़ुज़ात जो थे सर वो दूर हुए सर, हुकूमत ने वो जो आदाद व शुमार
6: होगा। उधर तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि बजट में अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला गया है।
10: जो किसान का हाल किया गया खैबर पख्तूनख्वा में उस असला में जहाँ टुबेको है, बिल्कुल किसान को क्रश करके रख दिया है। किसान जो है ना बेचारे रुल रहे हैं।
6: पाकिस्तान के सूबा पंजाब का 5,903 अरब उजम का बजट सूबाई असम्बली में पेश कर दिया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज दी गई है। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान ने शदीद एहतजाज किया और इमरान खान की रिहाई के लिए नारेबाजी की। सामने पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे और हड़ताल एक हफ्ते से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद जारी हैं। पाकिस्तानी ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कल अदम करार दी गई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रावलाकोट में दरेक के मुकाम पर धरना भी गुज़श्ता कई रोज से जारी है। धरने के शुरका यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मौजूद हैं। धरने के शुरका से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की रहनुमाओं की पुरजोश तकरीर का सिलसिला जारी है।
11: हाथ उठाइएगा, लिखिए आते हो चल अफ्ता पे या पैसो
12: पैसा,
11: बीस दिन पे या पैसो
12: पैसा,
11: महीना रे या रेसो।
6: कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जम्मू कश्मीर के महाजरीन की नशस्तों के खात्मे और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए 9 जून से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। रियासती हुकूमत की जानिब से 5 जून को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम करार देकर इसके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान रावलाकोट और कोटली में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ तसादुम में 20 से ज्यादा मुजाहिरीन और 5 के लगभग सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि पुरतशद्दुद वाकयात में दर्जनों अफराद जख्मी हो चुके हैं। हुकूमत और कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का ताहाल आगाज नहीं हो सका। हुकूमत एहतजाज खत्म करने के लिए वज़ीद है, जबकि एक्शन कमेटी का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि एक्शन कमेटी के मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद जारी था, लेकिन आखिरी नशिस्त में एक्शन कमेटी की जानिब से गैर हकीकी शरायत रखी गई।
13: देखिए, गवर्नमेंट भी था और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट भी और सारे लोग, हमने उनके साथ एक मुआहिदा साइन किया 38 नुकात पे। उनके एक ही डिमांड सिर्फ वही जिसके लिए हमने कहा कि लीगल कमेटी है, आप उसके साथ बैठ जाए और बात करे।
6: उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के इंतजाम कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि इंतखाबात पर वक्त होने चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान रिपोर्ट, और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मुख्तसर होती हैं, प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाती, उनको मुकम्मल सुनने के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए, हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर हमको फॉलो कीजिए। और नशियात यहीं पर अब इख्तिताम को पहुंच रही है, कुछ थोड़ा सा वक्त बचा है और मैंने आपसे वादा किया था कि एक मोहब्बत और, जो पाकिस्तान में इस वक्त ड्रामा सीरियल चल रहा है माया अली और हजरत अमीर, इसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, उसका ओएसटी सुनवाऊँगा। तो चलते चलते शाहज़ेब कपूर की आवाज़ में आप ओएसटी सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ। फिर मिलेंगे, गर खुदा लाया अल्लाह निकेबान।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online, and on radio.
1: ਤੁਸੀਂ SBS ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋ।
2: जी आयनु जी, एस बी एस के पंजाबी प्रोग्राम में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। अज है जी दिन बुधवार, जून महीने की 17 तरीक, तो सिडनी तो मैं जसमीत कौर लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम। सारे सुन रहे स्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते हैलो जी। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असी उन्हां सारे परंपरागत मालकां नूं माण देना चाहुंदे हाँ जिन्हां दी धरती तों असी अज दा इह प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हाँ। पंजाबी प्रोग्राम कामा राय गलोकां ते उन्हां दे बुजुर्गां दीआं मौजूदा अते पिछलियां पुश्तां नूं सत्कार दिंदा है। असी उन्हां सारे रवायती मालकां अते आदिवासी ते टोरस स्ट्रेट आइलैंडर खित्तियां नूं वी सत्कार पेश करदे हाँ जिथों तुसीं साडा अज दा इह प्रोग्राम सुन रहे हो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है तुहाडा अज दा दिन सुकून भरिया लंघ रहा होगा। तुसी आपो अपने कामकार नवेड़न दे नज़दीक होंगे ते अज दे दिन दे सूरज नू ढालदा देख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि इस खूबसूरत जी शाम विच तुसी एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम नू अपने दिन का हिस्सा बना रहे होंगे ते अपने किसी दोस्त मित्र या परिवार नाल सांझा भी कर रहे होंगे। तो जे नहीं कर रहे तो जरूर कर दिओ, क्योंकि अज दे प्रोग्राम विच जिस मेहमान नाल आपां गलबात करनी आ उह कल तो सोशल मीडिया उत्ते छाए होए हन। जेकर तुसी सोशल मीडिया ते नहीं हो तां मैं तुहानू दस दिनी आ कि फीफा वर्ल्ड कप विच पहली वार एक सिंघ नामी पंजाबी नौजवान खेडदा नज़र आया है जी। न्यूजीलैंड की टीम वल्लों खेड रहा नौजवान खिडारी सरप्रीत सिंह, जो ऑकलैंड विच ही जमया पलिया है। न्यूजीलैंड का पहला मैच ईरान नाल सी ते इस तो पहला मैनू सरप्रीत नाल गलबात करन दा मौका मिलिया, जिस विच अपने पंजाबी पछोकड़ ते माण महसूस करदे होए उन्हां काफ़ी सारियां गल्लां बातां कीतियां जो कि मैं तुहानू अज दे इस एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम विच सुनावांगी। पर इस तो पहला मैं जरूर जानना चाहांगी कि की तुसी फुटबॉल फैन हो। इस वर्ल्ड कप दे केड़े केड़े मैचेस तुसी एस बी एस उत्ते देखे हन जां केड़े मैचेस लई तुसी बेसब्री नाल इंतज़ार कर रहे हो। शायद तुसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे फैन होवो यां फिर मैसी दे। ते आस्ट्रेलियन टीम विचों तुहानू सब तो वधिया खिडारी केड़ा लग रहा आ? इन्हां विचों किसे वी सवाल दा जवाब तुसी दे के सानू एस एम एस भेज सकदे हो। ते जेकर तुसी फुटबॉल दे विच ज़्यादा दिलचस्पी नहीं भी रखते तां वी तुसी सानू जरूर स्नेहा भेज जो ते आज दे प्रोग्राम विच अपनी हाजरी लवायो। स्नेहा भेजण लई नंबर है जी 0448-799-767 0439-799-767। जे गल अज दे प्रोग्राम दी करिए तां अज जाणांगे फीफा वर्ल्ड कप दे पांचवें दिन दीआं अपडेट्स।
3: काबो वाडे ने विश्व कप इतिहास विच सब तों वड्डे उलटफेरां विचों इक कर विखाया।
2: फेर डिग्री जां ट्रेड केड़े प्रोफेशन विच ज्यादा आमदन है ओहदे उत्ते चर्चा होवेगी।
4: इसे कारण ट्रेडां दी मंग अते तनखा दोवें वध रहे हन अते इस दा असर सिख्या प्रणाली विच वी दिखाई दे रहा है।
2: अज दी खास गलबात न्यूजीलैंड दी फीफा वर्ल्ड कप टीम दे खिडारी पंजाबी नौजवान सरप्रीत सिंह नाल करांगे।
5: So yeah, मैं पूरी कोशिश करदा, मेहनत मैं रोज करदा so that I can perform well.
2: ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਾਂਗੇ।
6: ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 1947 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਾਈਟਲ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਹੈ।
2: ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

0: फीफा वर्ल्ड कप का पहला वड्डा उलटफेर सामने आ चुका है। टूर्नामेंट की मजबूत दावेदार स्पेन नू डेब्यू कर रही काबू वाडे टीम ने जित तो वांझा रखा है। हैरानीजनक तौर पर टूर्नामेंट के पंजवें दिन खेडे गए चारे मैच ड्रॉ रहे, जो कि पिछले 68 सालों में विश्व कप में पहली बार होया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पंजवें दिन दी अपडेट्स में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ पुनीत ढींगरा अते यह है पंजवें दिन का पूरा राउंडअप। अफ्रीका की पहली बार खेड रही टीम काबो वाडे ने विश्व कप इतिहास में सब तो वड्डे उलटफेरों में एक कर विखाया, जदों उन्होंने अटलांटा में टूर्नामेंट की सब तो मजबूत टीम स्पेन नू बिना किसी गोल के ड्रा ते रोक दिता। टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाले सब तो छोटे देशों में एक काबो वाडे 40 साल गोलकीपर वॉजहिना ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 अहम बचा करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। दूजे पासे सिएटल विच बेल्जियम अते मिसर यानी इजिप्ट विचकार मैच एक एक दी बराबरी ते मुकिया। मिसर दे इमाम आशूर ने 19वें मिनट विच एक शानदार लंबी दूरी दी हिट नाल अपने वर्ल्ड कप दे सफर दी यादगार शुरुआत कीती। बेल्जियम दे तजर्बेकार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने 66वें मिनट विच मैदान ते आउंदिया ही अपना असर दिखाया। मैच विच दाखल होण ते सिर्फ 23 सकिंटां बाद ही मिसर तो अपने खिलाफ ही गोल करवाउण विच उन्हां ने मदद कीती। ग्रुप एच विच मियामी विच साउदी अरब अते उरुग्वे दा मैच भी एक एक नाल ड्रॉ रहा। दोवें गोल विरोधी गोलकीपरां वालों किए गए बचाव तो बाद मिले रीबाउंड्स ते किए गए, जिन्हां विचों एक एक गोल दोवें हाफ दे विच आया। स्पेन अते काबो वाडे दे पहला ड्रॉ खेडण तो बाद हुण ग्रुप एच विच मुकाबला पूरी तरह खुल चुका है। अपने पहले मैचों तो बाद चारे टीमां एक एक अंक दे नाल बराबरी ते ने। लॉस एंजल्स विच न्यूजीलैंड एलिजा दे गोलां दी बदौलत दो वार अगे रहा, पर ईरान ने दोवें वार वापसी की। मुहम्मद महबी दे 64वें मिनट विच किए बराबरी दे गोल ने मैच नू 2-2 नाल ड्रॉ करवा दिता। इस नतीजे नाल डे 5 दे सारे चारे मैच ड्रॉ रहे, जो कि विश्व कप दे 68 सालां दे इतिहास विच पहली वार वापरिया है। तुर्की खिलाफ जित तो बाद सोकरूज हुण मेजबान संयुक्त राज अमरीका खिलाफ वड्डी चुनौती लई तैयारी कर रहे ने। मिडफील्डर कॉनर मेटकाफ दा कहना है कि टीम अपनी जित दी लहर नू जारी रखण लई पूरी तरह तैयार है।
1: It's the best start we could possibly get heading into that game. Before the game we spoke about it. Believing in ourselves and just enjoying the moment. And I think for a lot of boys, didn't feel like we were nervous at all at the start of the game. And I think the fact that we started well really set us up. We're going to go into the next game full of energy, full of confidence.
0: सोकरूज अते संयुक्त राज अमरीका विचाले मैच 20 जून नू शाम 5 बजे SBS ते सीधा प्रसारित किया जाएगा। इस तो बाद टीम 26 जून नू पैराग्वे दे नाल भिड़ेगी। अते 6वें दिन वल नज़र मारिए तां फ्रांस अपने सफर की शुरुआत अफ्रीकी ताकतवर टीम सैनेगल विरुद्ध करेगा, जदों की आस्ट्रेलियाई कोच ग्राहम आर्नोल्ड की इराक टीम का मुकाबला नॉर्वे नाल होवेगा। इस तों बाद मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना अलजीरिया नाल होवेगा अते फिर आस्ट्रिया अते जॉर्डन आमो सामने होणगे। तुसी टूर्नामेंट के पंजवें दिन का वर्ल्ड कप डेली अपडेट सुन रहे सी। मैं हाँ पुनीत ढींगरा। फीफा विश्व कप 2026 का हर मिनट SBS अते SBS ऑन डिमांड ते लाइव अते बिल्कुल मुफ्त तुसी वेख सकदे।

0: प्यारे स्रोतियों वेला हो गया जी प्रोग्राम के अगले हिस्से तो पहला एक छोटा जा वक्फा लैण का। इस तो बाद हर बुधवार की तरह जाणांगे बॉलीवुड दियां खास खबरां। मैं देख रही हाँ जी स्क्रीन ते कुछ सुनेहे आए हुए हैं, ये पढ़ के सुनाऊंगी जी ब्रेक तो बाद। सो जेकर तुसी हजे भेज रहे हो फटाफट भेज दिओ जी, ब्रेक तो बाद फिर सुनाउनी आ। मिलदे हां जी इस छोटी जी ब्रेक तो बाद।
1: It feels good to be in control. No matter what, keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: SBS रेडियो ऐप नूं आज ही डाउनलोड करो ते अपने पसंदीदा प्रोग्रामां दा आनंद माणो। इस नूं ऐप स्टोर जां गूगल प्ले तों मुफ्त प्राप्त करो।
0: स्वागत है जी, मैं हाँ जसमीत कौर ते तुसी सुन रहे हो SBS पंजाबी। ते आज दे प्रोग्राम दे विच कुछ सुनेहे आए हुए जी, ते अगे वधण तो पहला पढ़ के सुनाउणा चाहांगी। सब तो पहला सुनेहा भेजिया जी हरमनप्रीत सिंह जी ने सिडनी तो, ते ओह कह रहे आ कि मैं कल भी सारा प्रोग्राम सुनिया सी MP सिंह जी दा, ते मैं सॉकर दा फैन आ जी, ट्राई करदा हुंना जदों भी टाइम मिले ते मैं हाईलाइट्स देख लैंदा आ। ते सरप्रीत सिंह जी नाल जो गलबात होई उहनां नूं काफ़ी वधिया लगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरमनप्रीत सिंह जी कि तुसी सानूं लाइव सुन रहे आ। ते जी हाँ, मैनूं लगदा सारे ही असी जिन्हां नूं टाइम नहीं मिलता लाइव देखण दा, ओह हाईलाइट्स देख के खुश हो लईदा हुंदा। सो बहुत वधिया लग्गिया जाण के कि तुसीं सॉकर नूं इंजॉय करदे आ। इस तों अगे भेजिया जी सिडनी तों ही एक होर सुनेहा आया बलदीश सिंह ते उहनां दे परिवार वल्लों, ते ओह कह रहे आ कि SBS पंजाबी टीम नूं सति श्री अकाल, ते अज दा प्रोग्राम उहनां नूं काफ़ी वधिया लग रिहा, ते ओह कह रहे आ कि इह प्रोग्राम पंजाबी कम्यूनिटी नूं जोड़ के रखदा आ। बहुत शुक्रिया बलदीश सिंह जी, तुहाडा सुनेहा हमेशा ही बहुत शलाघायोग हुंदा आ। सो बहुत शुक्रिया तुसीं सानूं लाइव सुन रहे हो। ते एक होर आस्ट्रेलिया दे दूसरे पार पर्थ तों सुनेहा आया है जी, ये भेजिया अमनप्रीत सिंह जी ने ते उन्हां दे परिवार ने, ते ओह कह रहे हैं कि SBS पंजाबी रेडियो नूं असीं काफ़ी समय तो सुन रहे हैं ते इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया जी अमनप्रीत सिंह जी ते उन्हां दा पूरा परिवार कि तुसीं सानूं लाइव सुन रहे हैं। ते इदां ही अज दे प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ। अगला सैक्शन साडा हुंदा है जी बॉलीवुड दी दुनिया दीआं खबरां दे बारे, उत्थों दे एक्टर्स ते फिल्मां बारे की नवीआं खबरां हन इस हफ्ते दी बॉलीवुड विच, जाणदे आ बॉलीवुड गपशप दे विच। आओ सुणदे आ हरप्रीत कौर दे नाल।
7: SBS रेडियो पंजाबी दे प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर, खबरां दी शुरुआत करदे हां। पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी अते सिंगर बादशाह ने इस साल मार्च विच चुप चुपीते व्याह कर लिया सी। हुण ईशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते फैंस लई एक सैशन रखिया। इस दौरान एक फैन ने पुछिया, मैडम तुहाडा अते बादशाह दा व्याह हो गया है। सवाल दा जवाब देंदे हुए ईशा ने लिखिया है, मैनूं लगदा है कि मेरे ते सवालां दा हड़ा गया है कि तुहाडा व्याह बादशाह नाल होया है। ईशा ने अगे लिखिया है, हाँ मैं व्याई हुई हां। ईशा ने पोस्ट विच बादशाह नूं टैग करदिया होया लिखिया है, पति देव दर्शकां दे कुछ सवाल ने, कृपा करके छेती तो छेती उहनां दा जवाब दो। दिल्ली दी पश्चिम विहार स्थित गाय गुरु रंधावा दे जिम ते गोलीबारी दी घटना सामने आई है। इस वारदात विच किसी दे भी जख्मी होण दी कोई सूचना नहीं मिली है। गोलीबारी दी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे मेंबर ने लई है। अनिल पंडित ना दा ए मेंबर अमेरिका विच बैठा है। अनिल पंडित ने अपने पोस्ट विच दावा कीता है कि गुरु रंधावा एक्टर सलमान खान दे बहुत करीब हो रहे सन। गैंग ने पहला भी गुरु रंधावा नु इस बारे विच चेतावनी दित्ती सी। गुरु रंधावा ने इन्हां चेतावनियां नु नजरअंदाज कीता, इसी कारण ए गोलीबारी दी घटना हुई है। इम्तियाज अली अते दिलजीत दोसांझ दी फिल्म मैं वापस आऊंगा दा नवा गाना क्या कमाल है रिलीज होया है। क्या कमाल है गाने नू दिलजीत दोसांझ ने गाया है। संगीत मशहूर संगीत निर्देशक ए आर रहमान ने

0: सनी देओल अते प्रीति जिंटा दी फिल्म दा दर्शकां दे दरमियान गजब दा उत्साह। पहला इस नूं लाहौर 1947 कहा जा रहा सी, लेकिन फिल्म दा अधिकारिक टाइटल बटवारा 1947 है। ए फिल्म इस साल आजादी दे मौके ते रिलीज होएगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ते बनी ए फिल्म इमोशंस नाल भरपूर होएगी। इस फिल्म दे निर्देशन अते स्क्रीन प्ले दी जिम्मेदारी राजकुमार संतोषी दे मोढ़ियां ते है। उते फिल्म दा निर्माण आमिर खान कर रहे ने। सुपरस्टार रजनीकांत दी आने वाली फिल्म जेलर 2 विच पहला शाहरुख खान ने कैमियो करन वाले सन, लेकिन समय दी घाट अते डेट्स दी दिक्कत दी वजह दे नाल हुण उन्हां दी थां ऋतिक रोशन नजर आउणगे। ऋतिक रोशन अते रजनीकांत पूरे 40 सालां बाद इकट्ठियां स्क्रीन शेयर करनगे। इस तों पहला दोवें साल 1986 विच आई फिल्म भगवान दादा विच नजर आए सन, जिस विच ऋतिक ने एक बाल कलाकार दे रूप विच रजनीकांत दे गोद लए होए बेटे दा रोल निभाया सी। ऋतिक रोशन ने इस फिल्म दे लई हां कह दित्ती है। ਉਹ 22 ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। शहनाज गिल ने एक बार फिर अपने फैंस दे दिलां दी घंटी बजा दित्ती है। एक्ट्रेस सिंगर ने हाल ही विच अपने आने वाले गाने डोर होक दा टीजर सोशल मीडिया ते शेयर किया सी। डोर होक दी वाइब्स पूरी तरह दे नाल सोलफुल अते इमोशनल है। इस विच लुकी तड़फ अते फीलिंग्स ने लोकां नूं होर ज्यादा क्यूरियस कर दिता है। श्रॉफ, जानवी कपूर अते लक्ष्य वड्डे पर्दे ते इकट्ठे आउण वाले ने। गल हो रही है एक्शन फिल्म लग जा गले दी। राज मेहता दे निर्देशन विच बनी इस फिल्म दे रिलीज डेट दा खुलासा कर दिता गया है। फिल्म लग जा गले नूं करण जौहर दे धर्मा प्रोडक्शन दे बैनर हेठ बनाया गया है। ए फिल्म अगले साल मई विच रिलीज होण वाली है। मैडॉक फिल्म्स दी एक होर फिल्म दा ऐलान हो गया है। राजकुमार राव इस विच लीड रोल विच ने। असी फिल्म प्रहार दा उज्जवल निगम स्टोरी दी गल कर रहे हां। दिनेश विजन ने फिल्म दी रिलीज डेट तो पर्दा चुक दिता है। फिल्म प्रहार दा उज्जवल निगम स्टोरी इस साल अगस्त विच रिलीज होएगी। ए फिल्म 7 अगस्त 2026 नु रिलीज होएगी। मशहूर गायक अते संगीतकार अमी मिश्रा दा नवा गाना साधुरे रिलीज हो गया है। ए गाना श्रोतावां नु जीवन दे गहरे सत्य ते विचार करन दे लई प्रेरित करदा है अते आधुनिक जीवन दी भज दौड़ विच पिछे हुंदे जा रहे ह्यूमन वैल्यूज नु उजागर करदा है।
1: राम राम भज साधुरे, राम राम भज साधुरे, बड़े भाग मानुष तन मिलता व्यर्थ गवाना साधुरे।
0: श्रद्धा कपूर दी फिल्म इथा इसी साल 28 अगस्त 2026 नु रखड़ी दे मौके ते सिनेमा घरां विच रिलीज होएगी। इस फिल्म विच श्रद्धा कपूर दे नाल रणदीप हुड्डा अते मोहम्मद जीशान अयूब भी मुख भूमिकावां विच नजर आउणगे। इथा दी कहानी महाराष्ट्र दी मशहूर लावणी अते तमाशा कलाकार विताभाई भाऊ मंग नारायण गांवकर दे जीवन ते आधारित एक बायोपिक है। इस विच 1940 तो लैके 1990 दे दहाके तक दे उना दे सफर, उना दी कामयाबी अते उना दे जीवन दे संघर्षां नूं विखाया जाएगा। बॉलीवुड दी मशहूर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मां बनन दे बाद एक बार फिर एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रखण दी तैयारी कर रही है। कैटरीना हुण सिर्फ फिल्मां तक सीमित नहीं रहना चाहुंदी, बल्कि हुण ओह ओटीटी ते भी हाथ अजमाउण दी सोच रही है। कैटरीना ने नवी कहानियां दे स्क्रिप्ट नूं पढ़ना अते उहनां दी चोण करनी शुरू कर दित्ती है। कैटरीना 2027 दे आखिरी महीनां तक अपनी अगली फिल्म जा प्रोजेक्ट दी शूटिंग शुरू कर सकती है। कैटरीना कैफ पहली बार किसी वेब सीरीज जा डिजिटल प्रोजेक्ट विच काम करने की इच्छा जता रही है। मां बनन तो बाद कैटरीना हुण अजिहियां भूमिकावां पाल रही है जो उन्हां दे निजी जीवन अते काम दोनों दे नाल तालमेल बिठा सके। कैटरीना कैफ नूं आखिरी बार साल 2024 विच फिल्म मैरी क्रिसमस विच वेख्या गया सी। तद तो ओह लाइमलाइट अते मीडिया तो कुछ दूर सी। नूरा फतेही दे गाणियां दा फैंस दे दरमियान अपना अलग क्रेज अते बज वेखण नूं मिलदा है। इस दरमियान हुण फीफा वर्ल्ड कप 2026 दे लई नूरा फतेही दा नवा गाना सीर सीर रिलीज हो गया है। टेलीविजन दा सब तो फेमस रियलिटी शो बिग बॉस अपने 20वें सीजन दे नाल वापस आ रहा है। लखा दर्शकां दे लई बिग बॉस दा मतलब ही सलमान खान है। सलमान दे फैंस दे लई चंगी खबर है कि ओह एक बार फिर इस शो नूं होस्ट करन दे लई तैयार ने। इस शो दे मेकर्स नवे प्रतिभागियां नूं चुनण दे लई ऑडिशंस शुरू करन वाले ने। इस बार कुछ पुराने मशहूर प्रतिभागी भी मुड़ तो घर विच एंट्री लै सकते ने। वैरायटी इंडिया दे मुताबिक इस शो दी तैयारियां तेजी नाल चल रहियां ने। सलमान 21 सितंबर तो नवे सीजन दी शूटिंग शुरू कर सकते ने। ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਲ ਫੋਰ ਦੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲਡਨ ਲੋਗੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਫ਼ਰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਮਾਲ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਡੇ ਠਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਿਨੇਮਾਈ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਾਲ 4 ਵਿੱਚ ਦਮਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਰਿਤੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਜਾਵਦ ਜਾਫਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ੇਖ, ਅੰਜਲੀ ਆਨੰਦ, ਉਪੇਂਦਰ ਲਿਮਯੇ, ਵਿਜੇ ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। 90 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੋਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰਹਿਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿਲਾ ਦੀਆ ਤੂਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਾ।

0: बॉलीवुड गपशप विच अज इन्ना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे और बॉलीवुड दी ताजा खबरां लेके। तद तक लई इजाजत।
1: प्यारे दोस्तों, अज दे प्रोग्राम नूं समेटण दा समां नेड़े आ रहा जी, पर इस तों पहलां एक सुनेहा आया होया जी, उह पढ़ के सुनाउणा चाहांगी। सुनेहा भेजिआ जी सिडनी तों इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते उहनां दे परिवार ने। उह कह रहे कि इस प्रोग्राम दा समां पंजाबीआं दी लोहड़े वेले दी चाह नाल बहुत मेल खांदा है। असीं हर वार इस प्रोग्राम दा आनंद चाह दीआं चुस्कीआं नाल ही लैंदे हाँ। SBS दी सारी टीम दा धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल सिंह जी, जसवीर कौर जी अते तुहाडे पूरे परिवार दा कि तुसीं सानूं अज लाइव सुन रहे हो। उम्मीद आ कि तुहाडी चाह भी स्वाद बनी होगी ते आज दा प्रोग्राम भी तुसी पसंद कीता होगा। पर दोस्तों, आज दा प्रोग्राम जेकर तुसी लाइव सुनिया ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। उम्मीद आ कि तुहानू पसंद आया होगा। हसदे रहो, मुस्कुराउंदे रहो ते अपनी प्रतिक्रिया जरूर साडे तक पहुँचाउंदे रहो। मैनूं जसमीत कौर नूं दिओ इजाजत, फिर मिलांगी अगले हफ्ते दे SBS पंजाबी प्रोग्राम विच। पर तुसी सुनो अज दे प्रोग्राम दा अखीरला गीत। ये गाया जी अरनाज गिल ने, अरमान गिल ने, ते गीत दा नाम आ जी ब्रैथलैस।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS Hindi. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुइवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, निफा, जिसे न्यू साउथ वेल्स सरकार से 3 साल की फंडिंग मिली है. इसी के इम्पैक्ट और इसके मायनों पर हम बात करेंगे फेस्टिवल के एक समर्थक खुशाल व्यास के साथ. इसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें. फिर SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश, जिसमें हम समझेंगे कि डिजिटल मीडिया, न्यूज़ और क्लिक बेट कॉन्टेंट का एंडलेस स्क्रोल कैसे हमारी सोच और कॉन्टेंट कंजम्पशन को बदल रहा है और एल्गोरिथम इसमें क्या रोल निभाते हैं. और अंत में SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का आज 5वां और आखिरी एपिसोड होगा, जो फोकस है ओवरसीज मनीज ट्रांसफ़र पर. अगर आपने कभी फैमिली को पैसे भेजे हैं या बाहर से कोई बड़ी रकम रिसीव की है तो ये एपिसोड आपके लिए ख़ास तौर पर है. इसमें हम समझेंगे कि लिमिट क्या होती हैं, टैक्स के इम्प्लिकेशन क्या होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और ATO के कुछ बहुत ही ज़रूरी रूल्स जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते. तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी. और आज के शो में हमारे पास आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी है, एक मूवी गिव अवे कॉन्टेस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको इस न्यूज़ फ्लैश के बाद बताऊंगा. तो आप बने रहिए SBS हिंदी पर, जिसपे हम प्ले करने वाले हैं न्यूज़ फ्लैश और फिर आपसे पूछेंगे कॉन्टेस्ट का सवाल. बुधवार 17 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2024 ऑस्ट्रेलिया में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों के लिहाज से अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा. इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ और ड्रग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पेनिंगटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज से 2,596 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 11% अधिक है. इनमें से 2000 से अधिक मौतें अनजाने में हुईं. रिपोर्ट का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में अब ओवरडोज के कारण हर दिन औसतन लगभग 7 लोगों की मौत हो रही है. बिल क्रूज फाउंडेशन के रेवरेंड बिल क्रूज ने कहा कि ये आंकड़े एक चेतावनी की तरह हैं. उनका कहना है कि ड्रग डिपेंडेंस को आपराधिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा मानकर उसका इलाज किया जाना चाहिए. विक्टोरिया में एक नया कानून स्टेट पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसके तहत बच्चों को गंभीर अपराधों के लिए भर्ती करने वाले एडल्ट्स को लाइफ इन प्रिजन तक की सज़ा हो सकती है. प्रीमियर जेसिंटा एलन ने कहा है कि ये कानून ऑर्गेनाइज क्राइम से जुड़े उन लोगों को निशाना बनाता है जो कमज़ोर और असुरक्षित युवाओं का शोषण करके उनसे हिंसक अपराध करवाते हैं. विक्टोरिया की अटर्नी जनरल सोनिया किल्केनी ने कहा है कि ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज में बढ़ते उस ट्रेंड के जवाब में है, जिसमें क्रिमिनल नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बच्चों को अपराधों के लिए भर्ती कर रहे हैं और उनसे ऐसे अपराध करवा रहे हैं जिनसे समाज को बड़ा नुकसान होता है. सरकार का कहना है कि ये बदलाव उन लोगों को निशाना बनाने के लिए हैं जो इन अपराधों की योजना बनाते और उन्हें चलाते हैं, न कि उन बच्चों को जो इनका शिकार बनते हैं. ऑस्ट्रेलिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 15% वेतन वृद्धि लागू की जा रही है, ताकि चाइल्ड केयर सेक्टर में वर्कर्स की कमी को दूर किया जा सके. ये वेतन वृद्धि दिसंबर 2024 से धीरे धीरे लागू की जा रही है. इसे परिवारों के लिए फीस में बढ़ोतरी की सीमा से जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य वर्कर्स को लंबे समय तक बनाए रखना, यानी स्टाफ रिटेंशन है. शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि बेहतर वेतन से एजुकेटर्स को आकर्षित करने और उन्हें रिटेन करने में मदद मिल रही है. सरकार का कहना है कि जिन चाइल्ड केयर सेंटर्स ने ये वेतन वृद्धि अपनाई है, वहां उन सेंटर्स की तुलना में फीस में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिन्होंने इसे लागू नहीं किया. नए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बाय नाउ पे लेटर सेवाओं पर सख्त नियमों से उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान पहले हो पा रही है जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इक्विफैक्स के डेटा के अनुसार एक साल में फाइनेंशियल हार्डशिप की औपचारिक रिपोर्ट करने वाले बोरोवर्स की संख्या बढ़ी है। ये संख्या 0.06% से बढ़कर 0.24% हो गई है जब इस सेक्टर को नेशनल क्रेडिट लॉस के तहत लाया गया। नए नियमों से वित्तीय तनाव यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा दिखाई दे रहा है और लोगों को समय पर सहायता लेने में मदद मिल रही है। साथ ही मिस्ड पेमेंट रेट्स में भी सुधार देखा गया है। डेटा के अनुसार बाय नाउ पे लेटर बोरोवर्स में फाइनेंशियल हार्डशिप की दर मॉर्गेज होल्डर्स की तुलना में कम है। ये दर बाय नाउ पे लेटर के लिए 0.24% और होम लोन्स के लिए 0.5% दर्ज की गई है। इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत ने उन आरोपों से इनकार किया है जो ग्लोबल सुमट फ्लोटिला पर सवार ऑस्ट्रेलियंस ने लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। इस फ्लोटिला में शामिल 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गाजा के लिए सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान इसराइल ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में एक आधिकारिक सबमिशन में शामिल होकर यह आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उन्हें टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस और अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसडर डॉक्टर हिलेल न्यूमैन ने ABC को बताया कि ये दावे झूठे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलेटरल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। भारत को 52nd G7 समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी आपने सुना न्यूज़ फ्लैश और अब शो को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने न्यूज़ फ्लैश से पहले कहा था कि आज हमारे पास शो में एक मूवी का गिव अवे कॉन्टेस्ट सवाल भी है, तो वो पहले पूछ लेते हैं आपसे। निफा जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है 2026, उस फेस्टिवल में एक स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है बॉबी देओल की नई मूवी बंदर की। और ये जो है ख़ास तौर पे मेलबर्न के सुनने वालों के लिए है जो मेलबर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग होने वाली है संडे को। और आपको सिर्फ ये बताना है कि जो फिल्म बंदर आने वाली है बॉबी देओल की, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, और आपको उसमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। तो 04397997667 पर अपना जवाब भेज दीजिए। और यही कॉन्टेस्ट आज हमने दिन में शुरू किया था सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, और कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं। कुछ लोगों जिन्होंने अपना जवाब भेजा है उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जसलीन, सौरव, रिची, संजीव, पल्लव और सिल्विया, इनके जवाब हमें मिल चुके हैं और काफ़ी और एंट्रीज आ रही हैं। तो जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट नहीं देखी है, तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना जवाब भी भेजिए। 04397997667 कौन है बॉबी देओल की आने वाली मूवी बंदर के इस मूवी का डायरेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जब तक आपके जवाब आते हैं, और इसी फेस्टिवल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। निफा यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया भर के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा कर रही है और अलग अलग शहरों में इसके मूवी प्रीमियर्स हो रहे हैं। और न्यू साउथ वेल्स की जो राज्य सरकार है उसने 3 साल की फंडिंग भी अब इसे दी है। ऐसे में हमने चर्चा की है फेस्टिवल के समर्थक कुशाल व्यास के साथ और उनसे समझा है कि इस फंडिंग के क्या मायने हैं। आइए सुनते हैं वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
3: दोस्तों, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी नीफा जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था और अब सिडनी में फिर एक बार है, लेकिन इस बार इसके पास एक कुछ खास बात भी है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ एक 3 साल लंबा करार हुआ है नीफा का, जिसके अंतर्गत ये फिल्म प्रदर्शित करेगा हर साल। आज इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशाल व्यास, जो कि नीफा से जुड़े हुए हैं और हमसे चर्चा कर रहे हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा है और कितना जरूरी है ये सफर। कुशाल, सबसे पहले तो SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
4: नमस्ते विशाली।
3: कुशाल, क्या कर रहे हैं आप नीफा के साथ इस समय और किस तरीके का अब तक का आपको लगता है कि नीफा का सफर रहा है?
4: विशाली, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि मैं गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी सब हिंदी पिक्चरों से समझ सकता हूँ, इसलिए तो इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी में। तो विशाली, माय कनेक्शन विद नीफा इज लार्जली, आई वाज अ फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फिल्म काउंसिल एंड आई एम इन्वॉल्वड इन वेरियस डिफरेंट रोल्स इन द ऑस्ट्रेलियन Indian community and broader multicultural scene. So with NIFA, honestly, my biggest role really is just as a supporter. And I'll be emceeing. I emceed the Sydney launch, and I'll be hosting the Melbourne program that's coming up tomorrow as well. The connection here is largely that I see as a supporter is honestly something where, as a person of the Australian Indian diaspora, I get the opportunity to actually see and support what impact that film has. I know what impact film has had on me. Maine kaha tha ki mera Hindi is only like even possible samajh sakta hu kyunki bahut Hindi picture dekh liya. So film obviously has an impact, and we want to see that film impact across the board, not just people of Indian heritage, but across the board and into other audiences in Australia as well. And so far, it seems like it's been doing really well. You know, it's a national festival that's been hitting runs in metropolitan areas, but also hitting into the regions as well. So it's very cool to see that audience is expanding and that engagement is becoming a lot more meaningful through both government but also on grassroots engagement as well.
3: इससे पहले SBS हिंदी के साथ हुई अपनी बातचीत में नीफा के संस्थापक अनुपम शर्मा ने ये हमको बताया था कि क्यों नीफा को, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, रीजनल्स में, क्षेत्रीय इलाकों में ले जाना आवश्यक था।
5: हम ये भूल जाते हैं मेलबर्न सिडनी में कि दूर दराज के एरिया में कितने भारतीय समुदाय के लोग बहुतायत में हैं, ना सिर्फ फिल्में नहीं देख पाते बल्कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने सिनेमा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को अपने ऑस्ट्रेलियन पड़ोसी से शेयर करें। हम आप भारतीय समुदाय के लोग तो घर आती है, हमें बरातियों को बुला, जो गैर भारतीय समुदाय के लोग हैं हमें उनको बुलाकर अपनी फिल्में दिखानी है। तो आप और हम तो हिंदी फिल्मों की चर्चा कर ही सकते हैं, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए कि निजी तौर पे, व्यावसायिक तौर पे, कि जो भारतीय नहीं है उनको मैं अपनी संस्कृति, अपनी फिल्में, अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं, उसी से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं।
3: इसी चर्चा को जब हमने खुशाल के साथ आगे बढ़ाया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप जब अपनी जेनरेशन को देखते हैं और अब जिस तरीके का इंडिया एक्सपोजर है, दोनों ही सिचुएशंस में फिल्म्स को कितना इम्पोर्टेंट पाते हैं?
4: मुझे लगता है कि फिल्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इन द सेंस के आई एम नॉट वन दैट इज, यू नो, सुपर स्टार स्ट्रक इन दैट सेंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ शाहरुख खान, इफ आई सॉ हिम आई'd बी वेरी वेरी स्टार स्ट्रक, बट फिल्म इज मच मोर डीप देन जस्ट इट्स इंपैक्ट इन जनरल पॉप कल्चर, एंड यू नो, इन माय जनरेशन, इन ओल्डर जनरेशंस, इन यंगर जनरेशंस, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ पीपल गोइंग आउट सीइंग वाचिंग स्टोरीज। I think the impact, though, is for people of Indian heritage, it is a connection with culture, because Indian film has become so much more mainstream in many ways, or going in that direction. That connection with culture is becoming more significant, more accepted. They can feel more comfortable in who they are and celebrate a big part of that cross-cultural heritage in many ways. But I think the broader picture, both to Indians and non-Indians alike, is that film is about storytelling, it's about shared connection. And so you don't need to be Indian to watch an Indian film in the same way that you don't need to be German to watch a German film, and so on and so forth. Humans connect with stories, and at a time where the world seems increasingly divided, film is that sort of connecting the conduit between different communities, understanding themselves better through storytelling. So I feel there's a much sort of softer power in film that gets talked about less, but is probably the most significant part of this entire thing.
3: Let's talk a little about New South Wales government supporting NIFA. जो New South Wales government का बिल्कुल अभी अभी अनाउंसमेंट आया है NIFA को सपोर्ट करने के लिए, कितना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट्स का या रीजनल पावर्स का, रीजनल गवर्नमेंट्स का, लोकल काउंसिल्स का इस तरीके के फेस्टिवल्स को सपोर्ट करना, और आपकी ओपिनियन में NIFA बाकी के फिल्म फेस्टिवल्स से किस तरीके से अलग रहा है?
4: बहुत इंपॉर्टेंट है, तो I'll divide that in two. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत इसेंशियल है, तो वो सब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और सब फेस्टिवल्स, तो दे वुड से दैट, बट इट इज वेरी वेरी ट्रू. रीजन बीइंग के देयर इज ओनली सो मच वन कैन डू इन ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम द आउटसेट, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू नो अनुपम शर्मा इन द वर्क दैट हीज डन टू ब्रिंग NIFA टू वेयर इट इज इन सच अ शॉर्ट टाइम दैट इट्स गॉन ट्रूली नेशनल. बट आई थिंक दैट विद गवर्नमेंट सपोर्ट इट इज एक्चुअली फाइनली शोइंग दैट गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स money where its mouth is. That, you know, hum sab suna hai ki Australia India ka connection bahut important hai, or you know, those sorts of speeches we hear very often, but it is very significant that the investment, the sort of support that could actually have an impact on the ground is had. And so this investment to see that the government values these sorts of festivals, that it values these contributions to the arts, is something that's to be congratulated. But it also means that it becomes sustainable. Ke ye sab, you know, ek do saal ke liye hota hai, phir we never hear from it again. This gives it actual sustainability to see that it continues and becomes a part of, you know, the New South Wales experience in many ways, you know, with this New South Wales government grant. So it becomes something that is looked forward to year in, year out. And the second part to your question was just about the regions. And I think this is a very important question and a very important part of what NIFA brings. We are obviously very lucky in metropolitan cities, okay? We have good exposure to various different cultures and various different experiences. Regional hubs often have very diverse populations and are very, very keen in exploring these sorts of connections, but have less accessibility to it. So the good thing about NIFA is, you know, it's gone to Dubbo, it's gone to Broken Hill, it's gone up to Darwin, it's going to all across the country, which means that we aren't just exposing NIFA or Indian film more generally just to audiences who already watch Indian film, right? They are going to people who otherwise, particularly in regional areas, may not necessarily have had the same level of connection that we might be lucky enough to have in metropolitan areas. And it means, again, that grassroots storytelling, that connection with community is critical. Again, I can't emphasize enough that at a time, unfortunately, where, you know, we are seeing more divisions, and there you know, there is a lot of anti-migrant and often anti-Indian sentiment that you see online. These are the sorts of initiatives on a grassroots level that can actually have an impact in the psychology and the experience of many different people. And that's the power of film. So that grassroots connection and making sure it's truly national, not just something you see in Sydney or Melbourne or Perth or in any of our capital cities, but truly cross-cultural and across the country as large as Australia is.
3: जी, तो कुशाल, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है आगे आने वाले समय में और बढ़े. हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया.
4: थैंक यू वैशाली.
6: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
7: One more, let's go.
6: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. 3-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle 2-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
9: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
10: 3 employees and 2 work trucks.
9: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
10: They sure are.
9: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
10: Shockingly low, huh?
9: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
10: I got it.
9: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: SBS Audio.
1: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
12: यहीं जाओ दालिया. चुनबे हाल में.
13: SBS Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
16: Far from the partisan politics.
1: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio app download करें या फिर
17: sbs.com.au/audio.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एड ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब वक्त हो गया है इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कुछ खास खबरें.
18: पश्चिम एशिया तनाव और समुद्री व्यापार पर इसके असर का मुद्दा भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में उठाया है. फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित इस सम्मेलन के आउटरीच सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संबोधित किया. समुद्री व्यापार मार्गों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में की. हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. वैश्विक सहयोग में समानता, साझी जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को आधार बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया. उन्होंने भारत के पक्ष को सामने रखते हुए कहा कि भारत मानवता सर्वोपरि के सिद्धांत को मानता है. आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है. भारत को इसमें विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है. सम्मेलन के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है. इस द्विपक्षीय वार्ता में बहुचर्चित व्यापार समझौते को लेकर चर्चा होगी. समझौते को लेकर ज्यादातर तकनीकी काम पर पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. इस बैठक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की संभावना है. और अब चर्चा नीट परीक्षा की, जिसको लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है. नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, जो मेडिकल छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, इसमें गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है. पिछली बार पेपर लीक के कारण 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस बार कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार सजग है. सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. छात्रों की गूंज नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के लिए आज राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं. यहां वे छात्रों के साथ संवाद करेंगे. छात्र और उनसे जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार पर कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है. कोचिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले कोटा शहर में हजारों छात्र रहते हैं. कार्यक्रम में छात्रों को आने से रोकने के लिए प्रशासन दबाव डाल रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस बारे में कहते हैं,
19: जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी.
18: वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है. भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहते हैं,
20: पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. जहां तक ये नीच की बात करते हैं, तो ये आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू हुआ? केरल से. केरल में हमारा शासन नहीं था, वहां से शुरू हुआ. फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष?
18: छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस जनता पार्टी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है. व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुए कांग्रेस जनता पार्टी देश भर के शहरों में प्रदर्शन कर रही है. नीट और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. मंगलवार को नागपुर में प्रदर्शन किया गया। इसके पहले जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अभिजीत ने इसके पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास को लेकर अभिजीत कहते हैं,
11: आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
18: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी का मुद्दा बड़ा और राजनीतिक बनता जा रहा है। अब इसकी जांच एसआईटी के हवाले है। संदिग्धों के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और पुजारियों से भी जानकारी ली जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
13: जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था वहाँ एसआईटी बन रही है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं और हमारे साधु संतों पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे, इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा।
18: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं,
17: भाई अगर संत हो सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गेरुआ बने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। जो चढ़ावा जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो भारतीय एंट्री हो जाती ईडी की।
18: भाजपा ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की भाजपा सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आई है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहचान में सकारात्मक बदलाव आने का दावा किया।
21: अब यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन से है।
18: उत्तर प्रदेश के बाद चर्चा महाराष्ट्र की, जहां राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुए टूट के बाद अब बारी शिवसेना उद्धव गुट की है। इसके 9 में से 6 लोकसभा सांसद बगावत कर सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए बड़ी धनराशि ऑफर की जा रही है। इन सांसदों को पाला बदलने से रोकने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद सक्रिय हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इंडिया रिपोर्ट के बाद अब वक्त हो गया एक एडब्रेक का, लेकिन एडब्रेक से पहले आज का जो कॉन्टेस्ट सवाल है वो एक बार आपसे फिर से पूछ लेते हैं। काफ़ी एंट्रीज आ रही हैं और अगर आपने अपना जवाब अभी तक नहीं भेजा तो आप ही भेज दीजिए। ये कॉन्टेस्ट है निफा से जुड़ा हुआ, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ख़ास तौर पर ये जो मूवी टिकट्स हैं ये मेलबर्न के लिए हैं, तो अगर आप मेलबर्न से हैं तो ज़रूर अगर आप मैसेज में लिख देंगे कि आप मेलबर्न से हैं तो और अच्छा होगा। सवाल यह है कि बॉबी देओल की जो मूवी आने वाली है बंदर, उसकी उस मूवी के डायरेक्टर कौन है? आप अपना जवाब अपने नाम और ईमेल एड्रेस के साथ 04397997667 पर भेज सकते हैं। ये इस मूवी का प्रीमियर होने वाला है इस फिल्म फेस्टिवल में इस 21 जून यानी संडे को, और ये मेलबर्न में होने वाला है और 6 बजे शाम में इसका प्रीमियर होगा। तो अगर आप भी इसमें आना चाहते हैं तो डबल मूवी पास जीतने का मौका है। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि बंदर मूवी जो नई मूवी है बॉबी देओल की, उसके फिल्म डायरेक्टर कौन है? 04397997667 हमारा नंबर है। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, और अगर आप मेलबर्न रहे हैं तो ज़रूर मेंशन करिएगा क्योंकि ये ख़ास तौर पे मेलबर्न के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैटब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर कुछ गानों का समय हो गया है और कुछ आखिरी रिपोर्ट्स। बने रहिए SBS हिंदी पर।
0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
22: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
23: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
22: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by GEICO with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
24: I'm on top of the world!
22: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
25: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
26: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर, हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
2: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब समय हो गया है एक गाने का। गाना सुनेंगे और बहुत ही आइकॉनिक गाना है और शाहरुख खान की मूवी का गाना है, वो हम सुनेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दें कि इस गाने के बाद हम वापस आएंगे और आपको लेके चलेंगे एक ख़ास रिपोर्ट में SBS एग्जामिन्स में, जिसमें आज बात होगी सोशल मीडिया स्क्रोलिंग की। तो उस रिपोर्ट का भी आप इंतज़ार करिएगा और ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको मिलता हूँ इस गाने के बाद।

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील। और इस वक्त अब हम बढ़ते हैं आगे एक रिपोर्ट की तरफ। डिजिटल मीडिया, न्यूज़ और क्लिकबेट कंटेंट का कभी ना ख़त्म होने वाला स्क्रॉल, चाहे वो हेडलाइन हो या फ़ोटो और वीडियो, ये एक समाज के तौर पर हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। एल्गोरिथम किस तरह काम करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। और ये है SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश, और इसे प्रस्तुत करेंगे आपके लिए अनीता ब्रार।
1: ऑस्ट्रेलिया में मीडिया ओनरशिप का जमाव या केंद्रीयकरण दुनिया में सबसे खराब में से एक कहा गया है। और जिस तरह की खबरें हम देखते हैं, उस पर मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अपना असर डाल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक समाज के तौर पर हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। ये एक जटिल जाल और वर्गीकरण है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही बड़े प्लेयर्स हैं। 9 एंटरटेनमेंट कंपनी, सदर्न क्रॉस ऑस्ट्रेलियो, 7 वेस्ट मीडिया और न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मीडिया संगठनों के पास द ऑस्ट्रेलियन, द फाइनेंशियल रिव्यू, स्काई न्यूज, 9 न्यूज, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड, द एज जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं। लिस्ट लंबी है। और पिछले लगभग 10 सालों में मेटा, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी न्यूज का मुख्य सोर्स बन गई हैं। ये बड़ी कंपनियां फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अपनी डिजिटल बिचौलिया चलाती हैं, जो हमारे और मीडिया कंपनियों के बीच बैठती है और असल में हमें मिलने वाली जानकारी के चौकीदार यानी गेटकीपर बन

0: जाते हैं। SBS एग्जामिन्स के इस एपिसोड में हम जान रहे हैं कि बड़े मीडिया और बड़ी टेक कंपनियां कुछ आम ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मिलने वाले न्यूज़ पर कैसे असर डाल रही हैं और दुनिया को देखने के हमारे नज़रिए पर कैसे असर पड़ रहा है। SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। कैमरन मैकडोनल्ड कहते हैं कि जब मीडिया ओनरशिप एक जगह जमा हो जाती है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है, तब ये कुछ खास लोगों को गलत तरीके से अधिक शक्ति दे देती है, जो हमारी राजनीति और पब्लिक डिबेट को आकार देने में काबिल हो जाते हैं।
1: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers. The two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually, surprisingly, the ABC is actually a real kind of media giant as well.
0: McDonald, Adelaide University में मीडिया और कम्युनिकेशन लेक्चरर हैं और 2024 में ग्लोबल मीडिया और इंटरनेट कंसंट्रेशन पर नज़र डालने वाली टीम का हिस्सा थे। रिपोर्ट में पाया गया कि मीडिया सघनता यानी कंसंट्रेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे खराब स्थान पर है।
1: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated. For the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
0: Headline or news hook हमेशा किसी कहानी को जितना हो सके उतना दिलचस्प या रोमांचक बनाने के लिए लिखे जाते हैं। लेकिन मैकडोनल्ड का कहना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी डिजिटल मीडिया कंपनियों ने क्लिक और एंगेजमेंट के लिए हेडलाइन और कहानियों को सनसनीखेज बनाने का बढ़ावा दिया है।
1: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but is just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
2: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
0: Dr. Michael Neutel, Queensland University के School of Psychology में Associate Professor हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय हम जो देख रहे हैं, खासकर जिसे न्यूज माना जाता है, वो एक प्राथमिक इच्छा को जगा रहा है जो हमारे पुराने पूर्वजों तक जाती है।
2: You know, our brains are designed to find threats in the environment, and we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us, because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
0: Unka kehna hai ki news aur clickbait content ka kabhi na khatm hone wala scroll, chahe wo headline ho ya photo ya video, असल में हम में से बहुत से लोगों को एक सीखी हुई लाचारी यानी लर्नड हेल्पलेसनेस का अनुभव करा रही है, जो आखिरकार इस बात पर असर डाल रहा है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे काम करते हैं।
2: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
0: तो जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया से न्यूज ले रहे होते हैं, तो हम उन वजहों के बारे में ज़्यादा ध्यान कैसे रख सकते हैं कि हमें ऑनलाइन कुछ चीज़ें क्यों दिखाई जा रही हैं?
2: I think the two questions that I was asking myself when I was scrolling through news feeds is there anything I can do about this? And if the answer was like, no, then sometimes I would either teach the algorithm that I don't want to see this stuff. So you can often like, you know, right click a post and say, I don't want to see more stuff like this. And if there were things that I could do something about, then I would actually try to do that thing And then, you know, for example, there are times when I have, you know, sent a letter to my local politician saying, like, what's going on about artificial intelligence? What are the risks that you see and what are you going to do about them? And that gave me a sense of control. The other question I would ask myself is, this time spent on this social media app actually serving me? Like, do I want to keep doing this? And often the answer was no. Most of the time, the answer was no.
0: Algorithm or social media ko experience karne ke tareeke lagatar badal rahe hain. वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर तानिया नॉटली का कहना है कि मीडिया लिटरेसी अब कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, ये आवश्यक है.
3: सो मीडिया लिटरेसी इज अबाउट योर एबिलिटी टू यूज, एनालाइज, क्रिएट एंड शेयर मीडिया एंड डिफरेंट मीडिया टेक्नोलॉजीज.
0: इसमें ये भी शामिल है कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करते हैं और हमें वो जानकारी दिखाते हैं जिससे हम जुड़ने की संभावना रखते हैं.
3: The algorithms that run social media platforms, they want us to stay on the platform for longer. And to achieve this, they'll profile us, they'll work out our interests, our anxieties, our biases and beliefs in order to keep feeding us content that's going to keep us engaged for longer.
0: वो कहती है कि जब लोगों को ये बताया जाता है कि उनके online interaction से पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, तो वो इस बारे में बेहतर तरीके से फैसले ले पाते हैं कि किस पर भरोसा करना है.
3: Just asking critical questions, we know that really helps. Why am I saying this right now? Is this from an account I follow? Is this content an ad? Is it sponsored content? Is it from a trustworthy account? And also making a decision to ignore things that is not what you're looking for, to take back some control over your experience.
0: SBS Examines के लिए Olivia Diorio और SBS हिंदी के लिए इस एपिसोड को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने. अधिक जानकारी के लिए sbs.com.au/sbsexamins पर जाएं.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
6: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
5: Thank you, Leo.
6: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
7: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है.
9: SBS हिंदी पर हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और एक और गाने का वक्त हो गया है. और उससे पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा कोई भी पॉडकास्ट पसंद आया है, कोई भी ऑडियो कार्यक्रम, और आप उसे एक बार फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है sbs.com.au/hindi. और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक करिएगा, जहाँ हम आपके लिए कम्युनिटी स्टोरीज लेके आते हैं और बहुत सारे मज़ेदार कॉन्टेंट और रील्स भी. चलिए मिलता हूँ आपको इस गाने के बाद.

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे शो के आखिरी रिपोर्ट का। आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं हमारी जो फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड। अगर आपने कभी भारत या विदेश में परिवार को पैसे भेजे हैं या विदेश से कोई बड़ी रकम प्राप्त की है या करने वाले हैं तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड आपके लिए ज़रूर है। इसमें हम समझेंगे कि विदेश में मनी ट्रांसफ़र की क्या सीमाएँ होती हैं, क्या उन पर टैक्स लगता है, कौन से रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है और ATO तथा ऑस्ट्रैक के वो अहम नियम क्या हैं जो कई लोगों पर लागू होते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पता नहीं होते। आइए सुनते हैं स्वाति शर्मा की तरफ से ये जो खास सीरीज है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स,
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
2: नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि टैक्स सीजन से पहले हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का विषय है विदेश पैसे भेजना और रिसीव करना और उसके क्या टैक्स इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमारे समुदाय में ये बात बहुत कॉमन है, जहाँ परिवार में अपने माता पिता को महीने महीने पैसे भेजे जाते हैं या फिर किसी भाई बहन की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसे भेजे जाते हैं या कभी कभी इंडिया से पैसे मंगवाए भी जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर कोई विरासत में कोई गिफ्ट मिला। एक बेसिक सा रूल है जिसे जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज़ पैसे भेजने पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी पैसे भेज सकते हैं, पर तीन चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। एक, अगर एक ट्रांसफ़र $10,000 से ज़्यादा का है तो बैंक या रेमिटेंस सर्विसेज ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट ऑस्ट्रैक को करती हैं। ऑस्ट्रैक ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर यह सिर्फ मॉनिटरिंग का एक तरीका है। और दूसरा, अगर वो पैसा आपकी इनकम था या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था तो उसे टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और तीसरा, अगर वो पैसा पहले से टैक्स पेड इनकम से आया है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, पर रिकॉर्ड रखना फिर भी ज़रूरी है। इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे आज पुनीत सिंह के साथ, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। तो पेरेंट्स या भाई बहन को इंडिया पैसे भेजना या फिर गिफ्ट भेजना, ये अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, तो बताइए कि गिफ्ट और इनकम में क्या फ़र्क है और क्या ये फ़र्क टैक्स के हिसाब से मैटर करता है और क्यों?
3: थैंक यू स्वाति जी। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाति जी। हमें अक्सर आए दिन लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझे पैसे सेंड करने हैं, मुझे पैसे मंगवाने हैं। सो दिस टॉपिक इज़ क्वाइट रेलेवेंट फॉर अस। जब आप पैसे यहाँ से सेंड करते हो, अगर तो वो आफ्टर टैक्स मनी है, फॉर एग्जांपल आप यू नो अपना टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास सेविंग है उससे पैसा भेज रहे हो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप लेट से आपकी 70,000 की इनकम है और नियरली आपने 1,10,000 ऑलरेडी भेज दिया हुआ है इंडिया में, तो देन समथिंग इज़ देयर। सो रेड फ्लैग वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपकी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन, चाहे रेमिटली, एनी प्लेटफॉर्म, दे शेयर डेटा विद ATO विद ऑस्ट्रैक। सो वहीं से ये सारी जानकारी कलेक्ट हो जाएगी कि आपकी इनकम इतनी है जो आपने डिक्लेयर की है, थ्रू आउट द ईयर आपने इतना भेजा है, सो दैट विल नॉट गोना मैच। सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप आफ्टर टैक्स चीज़ें भेज रहे हो, आफ्टर टैक्स जो आपकी सेविंग है, शुडन्ट बी एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, देन यू आर डेफिनेटली इन हॉट वाटर।
2: तो अगर इंडिया से कोई बड़ी रकम रिसीव होती है, जैसे कि कोई इनहेरिटेंस है या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी की बिक्री होती है या कभी कभी पेरेंट्स भी गिफ्ट भेजते हैं, तो क्या उसे यहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है और क्या उस पर टैक्स लगता है?
3: आपको डिक्लेयर नहीं करना स्वाति जी यहाँ पर, बट ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो उस इनकम के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो थ्रू आउट द ईयर, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और वो जो आपका बैंक होता है वो ATO को रिपोर्ट करता है कि थ्रू आउट द ईयर इतना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है एंड इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपके फैमिलीज़ इंडिया से पैसा भेज रहे हैं फॉर सम रीज़न कि उनको इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करना है बच्चे को या बेटी को या बेटे को, तो उस पर टैक्स नहीं है। बट यस, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको कि यस ये पैसा इंडिया से आया है, किस पर्पस के लिए आया है, एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
2: तो जो लोग रेगुलरली पैसे भेजते हैं कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें रखने चाहिए जो एटीओ उनसे मांग सकता है?
3: सी जब इंडिया से आप पैसे यहाँ पर मंगवाते हो, ठीक है, पहले तो ये चीज़ देखनी कि पैसे भेज कौन रहा है। अगर तो आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ओके, एंड मेक श्योर आप उनसे गिफ्ट लेटर लिखवा लीजिए कि दैट दिस इज़ द गिफ्ट एंड दे आर नॉट टेकिंग दिस बैक, राइट। सेकेंडली कई लोग अपना अकाउंट इंडिया में भी होता है वो वहाँ से पैसा मंगवाते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, मेक श्योर कि वो जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा या आया उनके पास एक वैलिड रीज़न हो कि वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। क्योंकि अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेट्स से आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सेल की है एंड वो आपने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया हुआ बट यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपको वो रिपोर्ट करना होगा बिकॉज यू आर अ टैक्स रेजिडेंट। चाहे आपने ओवरसीज प्रॉपर्टी सेल की है आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। सो मेक श्योर वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ATO 4 साल 5 साल पीछे भी जा सकता है अगर दे फाउंड आउट कि भाई आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ।
2: पुनीत बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। SBS हिंदी की सीरीज़ मनी मैटर्स में अब तक हमने बात की टैक्स सिस्टम के बेसिक से लेकर डिडक्शंस, साइड हसल्स, स्कैम्स और विदेश पैसे भेजने की। उम्मीद है इस सीरीज़ ने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे और टैक्स सीजन को थोड़ा आसान बनाया होगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस श्रृंखला के अब तक के सभी भाग आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS हिंदी पर इस श्रृंखला को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला
0: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
0: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है, SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। SBS हिंदी पर आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे एंट्रीज भेजी हैं जो हमारा आज का मूवी कॉन्टेस्ट था और इसके विजेता अनाउंस होंगे कल के शो में, तो नज़र ज़रूर रखिएगा हमारे सोशल मीडिया पर भी और रेडियो शो को भी ज़रूर सुनिएगा। और ये मूवी प्रीमियर होने वाली है बॉबी देओल की निफा फेस्टिवल में इसी संडे 21 जून को, ख़ास तौर पर मेलबर्न में। तो विजेताओं के नाम कल घोषित रहे होंगे और फिलहाल आपसे लूंगा अलविदा एक आखिरी गाने के साथ और स्वादी के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।

0: है साउथ एशियन।
1: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
2: बजाना।

0: Non-stop Bollywood.
1: Don't stop. The Bollywood session.
2: Don't stop.
1: On SBS South Asian.
3: त्याग की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।

काटू के तुझे भी कम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यारा सा, उसमें नहीं शक मुझे, but I want you to stay।

क्वीन जैसे अपना नशा है, सुपर सुपर क्रीम जैसे मेरी जो मर्जी करता वो इतनी भी सेंटी ना तू हो

गुजार के वो जा रहा है कोई शबम गुजार के। वीरा है मैं कदा खुमो सावर उदास,

0: SBS South Asian.
1: अरे अल्फा बीटा गामा थीटा, तेरे भाई ने सबको पीटा
2: भगा भगा के।
1: आपके लिए आए स्पेशली।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: कर्मा और रफ्तार, ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे।
2: कैसे भाइयों?

है पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: हार के वो जा रहा है कोई शब्द का। वीरा है मैं कदा फुमो सागर उदास, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: SBS South Asian,
2: your news from here and hits from home.